0: अरे देवा के तंत्र पु सोचे तो कहीं इतने कि नेट चली ता सोरंग सोंसो टेस्टों दिता यों ना ता माँ वाला ना कंडी कन्या चमुल थंजर सांग
1: देता तेरा ना क्या खशिम दांज को तीना ता रंगीन सोना रहता तो तुम वहीं तीना ता दे यों ना अंद चों चों जो के काटर चिंबोज के मचिक दे जाना सोब जुंगे जुरा जंग के चों जी देता जु दे निया जा यंसे तोंग ती हानी ता रंगीन शेरा सोना ता जिक तं Wakandi contoh tayona ta rangi nakhun lochin loma zigime ke ta chonlin de ganu nakhun manga zigtan de chili yungi jangge chongji ta gyuji ge shorke rangi chongji to gota chapje kani aji thongge ji ga thong do ta ta tang ge de thong do ge ngi sen ta mang yin char jin
0: je je te na ta chi terung de chiron no ge thonji chama chongji na ra sani rangi chachi sig bidang ge mo te ndo na ta chu rangge ta ur chongji na dewa ge thong tribu shuchi ge thilni ता न्यामली खंग गांजे बाज कुंग इतने की जो न्यामली खंग दे ची गोष्ठस का तब दीजिए ना
1: ओरे ता अच्छो न्यामली खंग ना निहितों चेटगलो तब चिक निजम चिंतम हो रही ती ना ता तार को ता अच्छो ची सो सोर्जिंग रंजिंग खान द केम गोनी खाए ना रा सोर्जिंग रंजिंग चु शास्वी दली जोकु शास्वी दली तीव शानी तुम जिम से तमस गिन तमस गिन ना रा ता जी rāng sāni nī nīkkwā chī tā chōng tsagirī jāk jī mwa nī chāng chē sā nā rā chāng nīkkwā chāng tamu zhōng jō mā thūm nī jāng chūrī tī nā tā tā thāng nī chōng chōng dē tā kōrkum tā mūna tām zhīng zhīgī tā nī dē chī tō nā tā o tā rāngī nyām lī khaṅ gā thūn jī mā rā nā mā rā sō chā zhīgī rē zhī nā tā nī thāvlam gā tīng khori gā nā rū tā mā thūm nī jāng chūrī tā chī kū rāngī ngī sīn tā tā tā tī nā tā जिसको कहना था रंगी न्यामली कंग थोंजिंद तांतो मुग चोंचो थोंनी चिकनी चाब जग अनिनी न्योचों समनी शेरचों ता जेनी ता सोबजों है जो तांतो मुग कम इला सोंगो
0: या या तेरंग कंग लेंसिंग के चांडे तंगली यो थिजी शेशे
1: ओ या क्वाटिं शे
2: रेट बनाम पा चोंसुब तार्पल के सचिन दर निम्बु शिवा तंतन दाल तंगी रोंडो मांसो ताव संजना सागनी रंग थोंखंगर गेसन द वेशली दाल तंगी थोंजी साचनी द थोंजी साचिंग लामखा तेतिन दाल तंगी जोरशिक लामखा जगन्य कोनं द कर्सन तेरंग वंडल साकल शिग थमंग कैचिस गर Tena terung lemsin di nanga solun jemkil de sunga dal tang. Solun jemkil ki sani ki kili pa tab ki kirchi kili chizg saatin yuk. Tuanzi kung kung saatin yuk. Tala suqa mangpuz gin jemtun yun uga ni sila di yuk na. Ta nyamli kung tang tani unsila suqa mangpuz ga chung gina sani rung shkamka ga tuanzi, shura oma ga tuanzi. Di han shik yin gina ta logur ga nam tab. Dala suqa mangpuz ga linu yi dal tangi ta shanshin ᱱᱟᱝᱜ ᱴᱷᱚᱢᱨᱟ ᱢᱟᱝᱯᱩᱡ ᱜᱟ ᱠᱷᱟᱛᱞ ᱠᱷᱨᱡᱤ ᱠᱷᱟᱛᱟᱞᱤ ᱫᱟᱞ ᱛᱟᱝ ᱟᱛᱟ ᱥᱟᱪᱟ ᱢᱟᱝᱯᱩᱡ ᱜᱟ ᱴᱮᱴᱩ ᱜᱮ ᱛᱷᱩᱠᱚᱱᱤ ᱢᱟᱥᱠ ᱥᱤᱨᱛᱷᱚᱭ ᱭᱮ ᱛᱷᱩᱠᱚᱱᱤ ᱛᱮ ᱛᱮᱱᱤ ᱫᱟᱞ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱱᱤ ᱨᱟᱝᱜ ᱢᱟᱢᱚ ᱢᱟᱝᱥᱚᱱ ᱫᱮᱱ ᱡᱚᱨᱥᱤᱠ ᱞᱟᱢ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱮ ᱥᱪᱚ ᱪᱚᱱ ᱫᱮ ᱭᱤᱝ ᱡᱚᱜᱱᱫᱜᱨᱟ ᱨᱟᱢᱫᱤᱠ ᱱᱤᱣᱟ ᱠᱟᱪᱤᱱᱡ ᱜ ᱛᱷᱚᱝᱜᱚᱱᱚ ᱫᱟᱫᱩ ᱠᱚᱱᱫᱮ ᱤᱝᱜᱮᱱᱟ ᱦᱟᱥᱤᱝᱜ ᱯᱷᱟᱱᱥᱢ ᱥᱚᱯᱤ ᱭᱟᱱᱞᱤᱜ ᱡᱤᱜᱨᱮᱞ ᱛᱤ ᱦᱟᱱᱥᱤᱠ ᱥᱟᱝᱥᱤᱱ ᱨᱟᱢᱵᱟ ᱜ ᱥᱛᱜᱪᱩᱵ ᱡᱮᱨᱥᱤᱠᱟᱨ ᱡᱮᱱᱡᱤᱱ ᱵᱟᱞ ᱦᱟᱢᱚ ᱭᱮᱡᱩᱱᱟ ᱥᱚᱝᱜᱮᱱᱟ ᱭᱤᱝ ᱢᱟᱨᱜᱤ ᱥᱛᱜᱪᱩᱵ ᱠ ᱡᱮᱨᱥᱤᱱ ᱫᱟᱨ ᱡᱮᱱᱡᱤᱱ ᱫᱟ ᱛᱟᱨᱯᱞ ᱛᱟᱝ ᱫᱟᱞ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱱᱤ ᱢᱟᱝᱥᱚᱜ ᱛᱟᱝ ᱞᱟᱯᱟᱨᱛ ᱛᱟ ᱠᱷᱨᱪᱩ ᱥᱟᱪᱟ ᱛᱟᱜ ᱵᱟᱢᱞ ᱛᱟᱜ ᱞᱤᱥᱤᱠ ᱠᱟᱱᱟᱛᱩᱱ ᱢᱟᱝᱟᱡ ᱛᱷᱟᱠᱪᱤᱞ ᱥᱟᱱᱤ ᱛᱟᱜ ᱵᱟᱢᱞ ᱛᱟᱜ ᱥᱚᱝᱜᱮᱱᱟ ᱭᱤᱝ ᱨᱟᱝᱜ ᱞᱟᱜᱷᱤ ᱡᱚᱞᱤᱱ ᱫᱮᱛᱮᱱᱤ ᱫᱟᱞ ᱛᱟᱝ ᱨᱟᱝᱜ ᱜᱚ ᱠᱷᱟᱱᱤ ᱭᱚᱝᱜᱩ ᱡᱟᱛᱷᱱᱩᱜ ᱞᱟᱢᱠᱷᱟᱱ ᱫᱟ ᱢᱩᱡᱜ ᱴᱤᱱ ᱚᱱᱚᱱ ᱫᱮ ᱤᱝᱜᱮᱱᱟ ᱭᱤᱝ ᱦᱟᱥᱤᱝ ᱭᱟᱜᱯᱩᱨᱤᱞ ᱱᱟᱥᱩ ᱨᱟᱝᱜ ᱢᱟᱝᱥᱩᱠ ᱵᱟᱢᱞ ᱛᱟᱜ ᱥᱚᱝᱜᱮᱱᱟ ᱛᱤ ᱟᱨᱜᱤᱱᱛ ᱛᱟ ᱛᱷᱟᱨᱟᱝᱟ ᱞᱤᱠᱟᱱ ᱞᱤᱜᱤᱱ ᱡᱩᱜᱚᱱᱟ ᱦᱟᱥᱤᱝ ᱛᱟ ᱢᱟᱨᱫᱤᱱ ᱪᱷᱟᱢᱞᱮ ᱛᱚᱱ ᱛᱟᱱᱤ ᱤᱝᱜᱮᱱᱟ ᱥᱚᱨᱞᱤ ᱱᱤᱜᱟ ᱟᱥᱤᱠᱪᱩᱜ ᱭᱤᱞ ᱢᱟᱛᱷᱱᱤ ᱛᱚᱢᱚᱜᱟ ᱱᱟᱛᱩᱱ ᱫᱮ ᱤᱝᱜᱮᱱᱟ ᱛᱤ ᱟᱨᱜᱤᱱᱛ ᱥᱚᱝ ᱛᱟᱝ ᱡᱚᱱᱡᱤᱱ ᱭᱚᱱᱨ ᱛᱮᱱᱟ ᱠᱚᱢᱚ ᱛᱟᱣ ᱥᱚᱝᱜᱮᱱᱟ ᱭᱚ ᱱᱟᱛᱩᱱ ᱫᱮ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱛᱟᱣ ᱢᱟᱝᱯᱩᱡ ᱛᱷᱟᱠᱪᱮ ᱚᱱᱚᱱ ᱫᱮ ᱤᱝ ᱦᱟᱥᱤᱝ ᱜᱮ ᱭᱚᱠᱟᱡᱮ ᱛᱮᱨᱤᱝ ᱞᱮᱱᱥᱤᱱ ᱛᱮᱥᱤᱜ ᱜᱚᱝᱜᱚ ᱛᱚᱱᱥᱢ ᱱᱮ ᱱᱮ ᱡᱚᱞᱮᱥᱤᱱ ᱫᱤ ᱥᱚᱢᱡᱤᱱ ᱜᱟᱱ ᱠᱨᱵᱟ ᱥᱟᱨᱜᱮ ᱨᱟᱠᱷᱤ ᱛᱟᱱ ᱛᱟᱨᱠᱞ ᱵᱟᱥᱤᱜ ᱞᱩ ᱥᱮᱠᱤᱯ ᱛᱟᱨᱠᱞ ᱵᱟ ᱜᱟᱱᱫᱤᱜ ᱥᱮᱨᱟᱱ ᱛᱚᱱ ᱥᱚᱱᱚᱢ ᱨᱮᱱᱪᱤᱱ ᱜᱤᱱ ᱠᱟᱡᱚᱱ ᱟᱢ ᱪᱤᱠᱤᱯ ᱥᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱫᱮᱢᱩ
3: ᱛᱟᱱᱟ ᱵᱤᱡᱤᱱ ᱡᱤ ᱫᱤᱥᱞ ᱡᱚᱝ ᱟᱭᱤᱱ
4: ᱟᱡᱮᱞ ᱥᱤᱠᱷ ᱥᱟᱨᱤᱱ ᱜᱤᱨ
5: ᱟᱡᱮᱞ ᱥᱤᱠᱷ ᱥᱟᱨᱤᱱ ᱜᱤᱨ
6: ᱧᱟᱝ ᱠᱷᱟᱱᱟ ᱵᱟ ᱪᱮᱥᱩ ᱫᱮᱢᱩ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱱᱟ ᱥᱮᱨᱥᱤ ᱜᱟᱫᱟ ᱫᱟᱢ ᱵᱤ ᱪᱤ ᱥᱢᱪᱤ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱨᱥᱤ ᱜᱟᱫᱟ ᱴᱤᱜ ᱵᱤ ᱪᱤ ᱡᱤᱵᱫᱤᱱ ᱩᱨᱥᱤ ᱜᱟᱫᱟ ᱴᱤᱜ ᱵᱤ ᱪᱤ ᱪᱮᱴᱤᱜ ᱭᱮᱱᱞᱟ ᱡᱟᱯᱨᱩᱨᱤ